0: की।
1: और उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गरज से मस्जिद के जरर पहुंचाएं और कुफ्र करें और मोमिनों में तफरका डालें, और जो उसके रसूल से इससे पहले जंग कर उनके लिए घात की जगह बनाएं, और मकसूद तो सिर्फ भलाई था मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। तुम उस मस्जिद में कभी जाकर खड़े भी ना होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है इस काबिल है कि उसमें जाया और नमाज पढ़ाया करो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर।
5: अमरीका स्विट्जरलैंड गालन जे नतीजे में ईरान मथा तेल विकरे जी पाबंदी आर्जी तौर हटाए छी। अमरीकी नाणे खाते पारा ईरान के 60 दिन लाए तेल विकरे या खरीद करण लाए लाइसेंस जारी। अमरीकी नाणे खाते मूजिब ईरान 21 अगस्त ताई पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल शयूं विकरो करे सकंदो। तेहरान पेट्रोलियम वारियूं शयूं अमरीका के भी विकरो करे सकंदो। स्विट्जरलैंड में थियल गालन तहत अमरीका और ईरान विच में हतमी माहदे लाए 60 दिन जो रोडमैप मंजूर कर। लिबनान में जंग बंदी ते अमल दरामद लाए डी कन्फ्लेक्शन सेल ठाण ते भी इतफाक। बिन्हीं मुल्क विच में हतमी माहद गालियूं जारी। आबना हुर्म सामूंडी जहाजन लाइ अच वन मुकम्मल तौर खुली वो है। ईरान एटमी शफाफियत के यकीनी बढ़ाने लाइ राजी थी वो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया से गाल बोल कंदे चयो ता ईरान आबना हुर्म में सुठा कदम खड़ी रो है। ईरान माहदे की पाबंदी न कई तो जरूरी होंद उ कंदी। ईरान बड़े पैमाने से हथियार के मुआयने लाइ राजी थी वो। आबना हुर्म में सूरत हाल बेहतरीन है। जहाजन की अच वन बहाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड के कामयाब दौरे बाद वापस डे पहुंची वे। वजीर आजम आए तो अलहमदुल्ला इस्लामाबाद मफामती याददाश्त तहत अमरीकाई ईरान विच में थियल पहरी आला सतह गर्जाणी में मुस्बत अगबराई थी है। हतमी माहदे लाए 60 दिन के रोडमैप से इतफाक थो है। गालन दौरान आला सतह कमेटी से भी इतफाक थो है जहां सियासी निगरानी से गड टेक्निकल गालन लाए रस्तो हमवार कदी। अमरीकी और ईरानी क्यादत की तामीरी गालन से संदन थोराए तो आया। तारीखी अमल के अगते वधाने में मदद करण से दोस्त मुल्कन जो भी थोराए तो आया। खास तौर से कतरी क्यादत जो थोराए तो आया। गालन के कामयाब करण वारन फील्ड मार्शल आसिम उन्हीं की कोशिशन से भी संदस थोराए तो आया। फील्ड मार्शल की कोशिश और अजम सबब अगबराई थी है। नायब वजीर आजम और घर वार सारा जुग रो ईरानी वफद के वॉक आउट वे धमकी बावजूद गालन में वही अगबराई थी। गुजरल 24 कलाक सुठा रहा है। लिबनान में अमन रो है। अबनाए हुर्मुज भी खुलल है। अमरीकी नायब सदर जेडी बैंस है तो आलमी तवानाई एजेंसी जा इंस्पेक्टर ईरान वींदा से थियल माहदे की निगरानी कदा। इसराइल में दिफा बारे हक के तस्लीम क्यों था पर लिबनान की खुदमुख्तियारी जो भी तहफुज चाहूं था। गालन दौरान अमरीका पारा तय कल चार ही हदफ हासिल क्या वह। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजन के चैलेंज कदड़ उम्मीदवार की फरियाद अदालत बुधी वी। गडल चिटाभेटी इम्तिहान 2024 जो इम्तिहानी कापियों सील करण जो हुक्म। तो उम्मीदवार मेरिट से नाकाम थे और नतीजन में बदनीयती जो को भी अंसर ना तें करे जरूरी आए तो दरख्वास्त डींदड़न जो जवाबी कापियों अदालती जांच लाए जमा कराई वन। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदराबाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का दरख्वास्त डींदड़न जहा तहरीरी कागज हासिल करे इम्तिहानी कापियों अदालत पारा मुकर्रर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जी सेल कई वन। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लागापल इख्तियार एडवोकेट जनरल सिंध के अदालती हुक्म के रू मुताबिक सहकार करने की हिदायत भी करी छी। वफाकी नौकरियों में सिंध और बलोचिस्तान से ज्यादती जो इंकशाफ। सेनेट के ज्यूलिशियन एस्टेब्लिश सूबाई कोटा से अमल दरामद न थन खिलाफ एक हफ्ते अंदर जवाब तलब कर वरतो। बलोचिस्तान लाइ मुख्तस 3384 सीटू इन वक्त जो भी इंकशाफ। कमेटी के कन्वीनियर बैरिस्टर जमीन घुमरो आए तो आबादी की बुनियादी मौजूदा फार्मूला सभी सूबन के नौकरियों में बराबर नुमाइंदगी देने में नाकाम रो है। सिंध और बलोचिस्तान जिता मुल्क के तेल और गैस जहा वा जखीरा निकरंदा उन्हें कंपनियों के बोर्ड्स में मुनासिब नुमाइंदगी न पी डी वे। नौकरियों में आयन तहत वफाक सूबन के मसावी

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अखबार KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: खानाए काबा में जब काबे का वारिस आएगा,
5: या मुंतकिम ज़हूर इमाम ज़मा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमक बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो लई।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.0 सिंध द्वारा
1: हम इसके फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते
2: जिनके समझी मिनटन ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।

0: है अपना घर और मटियारी
1: GFM 91.6।
2: It's 11 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: ईरानी सदर मसूद पर्शियान पाकिस्तान जो दौरा मञण लाइ इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। संदसि आजियां लाइ मुल्क जे गादी वारे शहर खे पाकिस्तान ऐं ईरान जे झंडनि सां सिंगारियो वियो। बड़ी तर्जुमान मूजिब ईरानी सदर हिकु वफ़द सां पहुचंदो, सियासी तौर अस्करी क़यादत सां मुलाकातूं कंदो। मुलाकातुनि दौरान ॿतरफ़नि लाॻापनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। सूरतहाल मथे पाकिस्तान जा दौरा मञींदो। ईरान यूरेनियम ॿाहिरि मोकिलण बदिरां हुन जो रचाव घटाईंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक डार चयो त न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। अमन हुरमत में जहाज 60 ॾींहनि ताईं बिना ट्रिप जे गुज़री सघनि था। जहाज खे रुगो स्टैंडर्ड न्यूगेशन या सर्विस फीस ॾियणी पवंदी। ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरेलो सख़्त थी सघे थो, पर मुआहिदो हासिल करण जोॻो आहे। ईरान अमरीका डील में को बि नाकारी नुक़्तो नाहे। सऊदी अरब, कतर, मिस्र ऐं इमारत असालसे जे अमल खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ईरानी पार्लियामेंटी स्पीकर बाकिर कालिबाग चयो आहे त $12 अरब जे ज़ब्त कयल असासनि जी बहाली वारे मुआहिदे खे हतमी शकल ॾिनी वई। अबन हुरमस में जहाज़नि जी अच वञ ते राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण इतफ़ाक़ थियो आहे। अबन हुरमस जे इंतिज़ामी ईरानी बंदोबस्त तहत ई ॻाल्हियूं थींदियूं। ॻाल्हियुनि दौरान इलाक़ई सलामती ख़ुदमुख़्तियार जी ज़मानत ॾियण ते इतफ़ाक़ थियो। इसराइल होद ते क़ाइम, लबनान में फ़ौजी कार्रवाई जारी रखण जो ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेथन्याहू, दिफ़ा वारे वज़ीर, इसराइली फ़ौजी सरबराह जे गॾियल बयान में चयो आहे त इसराइली फ़ौज ऐं शहरनि जा ख़तरा ख़तम करण लाइ कार्रवायूं जारी रहंदियूं। ॾखण लबनान में सिक्योरिटी ज़ोन बरक़रार रखण लाइ कार्रवायूं जारी आहिनि। अमरीका स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जे नतीजे में ईरान मथां तेल विकिरे जी पाबंदी आरज़ी तौर हटाए छॾी। अमरीकी नाणे खाते पारां ईरान खे 60 ॾींहनि लाइ तेल विकिरे या ख़रीद करण लाइ लाइसेंस जारी। अमरीकी नाणे खाते मूजिब ईरान 31 अगस्त ताईं पेट्रोल ऐं पेट्रोकेमिकल शयूं विकिरो करे सघंदो। तेहरान पेट्रोलियम वारनि शयूं अमरीका खे बि विकिरो करे सघंदो। स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि तहत अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआहिदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर कयो। लबनान में जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लिक्शन सेल ठाहिण ते इतफ़ाक़। ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआहिदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि। आबनाए हुरमज़ सामूरी जहाज जे अचवञ लाइ मुकमल तौर ते खुली वियो आहे। ईरान एटमी शफ़ाकत यकीन बणाइण लाइ राज़ी थी वेंदो। अमरीकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त ईरान आबनाए हुरमज़ में सुठा क़दम खणी रहियो आहे। ईरान मुआहिदे जी पाबंदी न कई त जेको ज़रूरी हूंदो उहो कंदासीं। ईरान वॾे पैमाने ते हथियारनि जी मायनियुनि लाइ राज़ी थी वेंदो। आबनाए हुरमज़ में सूरतहाल बहितरीन ऐं जहाज़नि जे अचवञ बहाल आहे। पंजाब के कातिल सां कोई बेदर्दीअ सां पुलिस अधिकारनि 32 साल नौजवान जो बिरादरी जे माण्हुनि सां पुराणो तकरार लंघणो। पिट माण्हुनि जे कतरण बाद साहिवाल खां रोड़ी में अची रिहाइश अख़्तियार कई हुई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: लटे खुश
1: हैरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे।
2: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम कुदरती जिजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विद मिनरल्स डाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं। आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ White Age Beauty Cream, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोसान।
2: रहे हैं नेटवर्क जिंदगी आवाज।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

कराची में 12 कलाकनि दौरान रोड हादसनि में ॿिनि औरतनि समेत 5 ॼणा फौत। कोरंगी नंबर 5 मॉडल पार्क वेझो कार जी टकर में 60 साला पीउसन औरत फौत। कयूमाबाद चोरंगी वटि टालो जो मोटरसाइकिल खे टकर, नौजवान फौत। गार्डन वारे इलाइक़े में रोड हादसे में ज़ख़्मी थियल 50 साला शहरी दम धणीअ वारे कयो। पंजाब चोरंगी अंडर बाईपास वटि टालो जी टकर सां ज़ख़्मी थियल नौजवान फौत, हिकु ॼणो थॾे ते फौत थी पियो। कराची में

0: एरिया में फ्लैट में औरत जो फाव लगल लाश है। पुलिस मौजूद औरत की सुणप सादिया ज़ाल आतिफ तौर थी है, जांच जारी है। उमरकोट वेझो बनी में कम कर नौजवान ते हमलो तशद्दुद ए तज़लील केस दाखिल ब जवाबदार गिरफ्तार गोठ वासरबा वासी नौजवान कलंदर बख्श सतन जवाबदार हमलो कयो नाजेबा वीडियो ठाए वायरल कया व्या मुतासर नौजवान कलंदर बख्श कोकरापार थाने से मुराद सोबत हबीबुल्ला समेत सतन जवाबदार खिलाफ केस दाखिल कराया इंसाफ जो मुतालबो कयो। आयसन मां मासूम निगरी मुबैना तौर से शह वठण बहाने अगवा वारसन जो एहतजाज वारसन जो तो मंचरी पाड़े मां जवाबदार सत साल इरशाद मल्हा के अगवा करे व्या पुलिस के इतला दिनों पर पुलिस कुछ ना करे सकी बाड़ी बाजी आप नती तो इंडस हाईवे थानो है वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: या है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मला चीज में आहे की कड़ो
2: नहीं. It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: खूबसूरती है जो असल राज. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बी इट्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91 जो आवाज
1: 45 PM चेक इज
2: तहजीब सकाफत से सजी सिंध नबी
1: जिसकी है
2: FM नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ईरान यूरेनियम बाहर मोकिलण बदिरां उन जो रचाव घटाईंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक़ डार चयो त न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल ससासन ऐं लबनान ते टेक्निकल वर्किंग ग्रुप चम कंदा। आबनाए हुरमज़ मां जहाज 60 ॾींहं ताईं बिना ट्रिप जे गाॾी गुज़री सघंदा। जहाज खे रुगो स्टैंडर्ड न्यूगेशन या सर्विस फीस ॾियणी पवंदी। ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो सख़्त थी सघे थो पर मुआदो हासिल करण जोॻो आहे। ईरान अमरीका डील में को बि नाकारी नुक़्तो नाहे। सऊदी अरब, कतर, मिस्र ऐं अमीरात सालसी जे अमल खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ईरानी पार्लियामेंटी स्पीकर बाकिर कालीबाद चयो आहे त 12 अरब डॉलर जी ज़ब्त कयल ससासन जी बहाली वारे मुआदे खे हतमी शकल ॾिनी वई। आबन हुरमज़ में जहाज़नि जे अचवञ जे राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण जो इतफ़ाक़ थियो आहे। तहती थी

करप्शन केस में गिरफ्तार पीआरटी येलो लाइन जो अगुणो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी सुबाई एंटी करप्शन कोर्ट में पेश जज मोकल के सिटी कोर्ट में पेश किया वो जमीर अब्बासी के लाहौर में गिरफ्तार करने बाद कराची मुंतकिल किया वो हो जमीर अब्बासी के पीआरटी येलो लाइन प्रोजेक्ट के ठेकेदार के 8 अरब रूपया अगवा देने जो इल्जाम है। रोड़ी में जवाबदार पंजाब वासी नौजवान के कातन से कोई बेदर्दी से कतल कर छोड़ पुलिस चवण है तो ही जवाब

कर पुरानी तकरार तक साहिवाल वासी बटीह वरन जो नौजवान मुर्तजा खोखर के कत्ल किया है। नौजवान बरादरी मानून से तकरार हलंदड़ हो बिन मानून के कत्ल केस में मलूस रहने बाद साहिवाल का रोड़ी में अची रिहाइश अख्तियार कई हुई। बलियाम हैदरी में फायरिंग चुनबाजी पे इलाके में फायरिंग में 55 साल मोहम्मद इकबाल मारजी पे इतला थे रेस्क्यू रजाकारन पहुंची मकतूल जो मड़ अस्पताल मुंतकिल कयो। कराची में 12 कलाकन दौरान रोड हादसन में बिन औरतन समेत 5 जणा फौत कोरंगीन औरत फौत कयूम आबाद चौरंगी पर ताला जो मोटरसाइकिल के टक्कर लगो नौजवान फौत गार्डन वाले इलाके में रोड हादसे में जख्मी थियल 50 साल शहरी दम डेई छो पंजाब चोरंगी अंडर बायपास पर टाला के टक्कर से जख्मी थियल नौजवान फौत एक जनों थरे से फौत थी पो हो। कराची में एक बी एरिया में फ्लैट में औरत जो फाव लगल लाश पुलिस मौजूद औरत जारी है। उमरकोट वेझो बनिए में कम कर नौजवान से हमलो तशद्दुद तजलील केस दाखिल ब जवाबदार गिरफ्तार गोट वासरवा वासी नौजवान कलंदर बख्श से 7 जवाबदार हमलो कयो नाजेबा वीडियोज थाए वायरल कया व्या मुतासर नौजवान कलंदर बख्श खोखरा पार थाने ते मुराद सोबत हबीबुल्ला समेत 7 जवाबदार खिलाफ केस दाखिल करायो है इंसाफ जो मुतालबो। आयसन मां मासूम निगरी मुबैना तौर से शय वठे जन बहाने अगवा वारसन जो एहतजाज वारसन चौथ मंचरी पाड़े मां जवाबदार 7 साल इरशाद मल्हा के अगवा करे व्या पुलिस के इतला दिनों पर पुलिस कुछ नथी करे वाड़ी बाजियाब न थी इन इंडा साहब धनु है वेंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिय मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: GAFM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: बुधंदा रहो।
2: It's one third time.
3: है मैं कुदरती जिजन सा तैयार कर हेरो है मैं डायमंड
4: एंड बाइक क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: खानाए काबा में जब काबे का वारिस आएगा
4: या मुंतकिम ज़हूर इमाम ए ज़मा।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वयो।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

ईरान ऐं अमरीका विच में जंगबंदी ऐं ॻाल्हियुनि में अहम अॻभराई थी आहे। पुख़्तो यकीन आहे त मफ़ामती अदाशनामे ते चटादार अमुन क़ाइम थींदो। वज़ीर आज़म जो क़ौमी असेंबली जे इजलास में ख़िताब, शहबाज़ शरीफ़ चयो त 60 ॾींहनि में MOU मुआविज़े सूरत अख़्तियार करे वठंदो। स्विट्ज़रलैंड में ईरान ऐं अमरीका विच में अहम टेक्निकी ॻाल्हियूं थियूं। पाकिस्तान सची दिल सां अमरीका ऐं ईरान विच में विझोटियूं घटायूं। ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान जो किरदार तारीख़ी आहे। ईरान अमरीका मुआहिदे सां सॼी दुनिया में अमुन क़ाइम थींदो। समूरनि सूबनि जी तरक़ी

0: ईरान यूरेनियम ॿाहिरि मोकिलण बदिरां हुन जो रचाव घटाईंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक डार चयो त न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। आमिन हुरमत मां जहाज 60 ॾींहनि ताईं बिना ट्रिफ जे गुज़री सघनि था। जहाज़नि खे रुगो स्टैंडर्ड न्यूग्रेशन फीस ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरेलो सख़्त करण जोॻो आहे। ईरान अमरीका डील में को बि नाकारी नुक़्तो नाहे। सऊदी अरब कतर मिस्र ऐं इमारात सालसी जे अमल खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाकर कारीबाज चयो आहे त 12 अरब डॉलर जे ज़ब्त कयल असासनि जी बहाली वारे मुआहिदे खे हतमी शकल ॾिनी वई। आबनाए हुरमुज़ में जहाज़नि जी अजमन ते राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण जो इतफ़ाक़ थियो आहे। आबनाए हुरमुज़ जो इंतज़ाम ईरानी बंदोबस्त तहत थींदो। ॻाल्हियुनि दौरान इलाक़ाई सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तियारी सां ज़मानत ॾियण ते इतफ़ाक़ थियो। इसराइल होड ते क़ाइम। लबनान में फ़ौजी इसराइल याहू दिफ़ा वारे वज़ीर इसराइली फ़ौजी सरबराज गॾियल बयान में चयो त इसराइली फ़ौज ऐं शहरनि जा ख़तरा ख़तम करण लाइ कार्रवायूं जारी रहंदियूं। ॾखण लबनान में सिक्योरिटी ज़ोन बरक़रार रखण लाइ कार्रवायूं जारी आहिनि। आमनाए हुरमुज़ सामूंडी जहाज़नि जे अचवञ लाइ मुकमल तौर ते खुली वियो आहे। ईरान एटमी शफ़ाकत खे यकीन बणाइण लाइ राज़ी थी वेंदो। अमरीकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया चयो त ईरान आबनाए हुरमुज़ में सुठा कदम खणी रहियो आहे। ईरान मुआहिदे जी पाबंदी न कई त जेको ज़रूरी हूंदो उहो कंदासीं। ईरान वॾे पैमाने ते हथियारनि जे मुआइने लाइ राज़ी थी वेंदो। आबनाए हुरमुज़ में सूरतहाल बहितरीन ऐं जहाज़नि जी अचवञ बहाल आहे। सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी नथो मिले। 44% घटि मिली रहियो आहे। ज़रात खाते जे वज़ीर मोहम्मद बख़्श महर जो सिंध असेंबलीअ में ख़िताब। मोहम्मद बख़्श महर चयो त पाणीअ खे ज़ाया थियण खां बचाइण ऐं पाणी चोरी रोकराइण लाइ निज़ाम खे बहितर बणाइणो पवंदो। सूबाई वज़ीर अली हसन ज़रदारी ऐं मोहम्मद अली मलकाणीअ ॿियनि ख़िताब कयो। करप्शन केस में बीआरटी येलो लाइन जो गिरफ़्तार। अगवान प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी 5 ॾींहनि जिस्मानी रिमांड ते एंटी करप्शन हवाले। जज मोकल ते हुजण सबब ज़मीर अब्बासी खे हथकड़ियूं हणी सिटी कोर्ट में पेश कयो वियो। एंटी करप्शन जांच ऑफिसर ज़मीर अब्बासीअ जो 14 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड ॾियण जी इस्तदा कई। अदालत 5 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड मंज़ूर करे वरितो। ज़मीर अब्बासी ते बीआरटी येलो लाइन प्रोजेक्ट जे ठेकेदारनि खे 8 अरब रुपया अगवा ॾियण जो इल्ज़ाम आहे। रोड़ीअ में जवाबदारनि पंजाब वासी नौजवान खे कादन सां कोही बेदर्दीअ सां क़तल करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदारनि पुराणे तकरार तां साहिवाल वासी 32 साल नौजवान मुर्तज़ा खोखर खे क़तल कयो आहे। नौजवान जो बिरादरीअ माण्हुनि सां तकरार हलंदड़ आहे ऐं ॿिनि माण्हुनि जे क़तल केस में मुलिस राज अख़्तियार कई हुई।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
1: जिंदगी गमाद से समझी बुधंदा जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजन मिंटन ते सिर्फ जीए एफएम 88 नेटवर्क ते
0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: PM brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: तारीख़ आहे अलाह जेका इज़त ॾिनी उहा अरबे रुपियनि में बि नाहे मिलंदी।

ईरानी सदर मसूद पजिशियान कुछ देर में पाकिस्तान के दौरे इस्लामाबाद में मौजूद पूरी तैयारियों मुकम्मल चवायती रादरास मोकलन बदना उनजो रच दो नायब वजीर द्वारा मीडिया के इंटरव्यू इसाकदार जो तो न्यूक्लियर फासासरे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कम कंदा अब महरूम जहाज 60 दिन ताई बिना ट्रिप के गुजरी सकन था जहाजन के रुगो स्टैंडर्ड न्यूगेशन या सर्विस फीस देनी पवंदी गालन जो बो मरेलो सख्त थी सके तो ईरान अमरीका डील में को नाकारी कतर मिस्र सालसी अमल की हिमायत चवाए तो 12 अरब डॉलर जो जब्त कल असासन की बहाली वे मुहिदे के हतमी शकल डिनी वही आबना हुरमज में जहाजन के अचवन के राबे जो निजाम कायम करण जो इतफाक थो है आबना हुरमज की रानी बंदोबस्त तहत गाल दौरान इलाकई सलामती और खुदमुख्तियारी की जमानत डे इतफाक थो आबना हुरमज सामुंडी जहाजन के अचवन मुकम्मल तौर से खुली वह है ईरान एटमी शफाफियत के यकीन बनाने लाइ राजी थी वो अमरीकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया से गाल बोल कर ईरान मुहिदे की पाबंदी न कई तो जो जरूरी होंद वो कंदी ईरान वे पैमाने से हथियार के मुआने लाय राजी थी वो आबन हुरमज में सूरत हाल बेहतरीन ए जहाजन की अचवन बहाल है इसराइल होड से कायम लबनान में फौजी कार्रवाई जारी रखे वजीर इसराइली फौज सरबराज गड़ियल बयान में इसराइली फौज ए शहर जहा खतरा खत्म करने लाइ कार्रवाई जारी है दखण लबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने लाइ कार्रवाई जारी रहा कौमी असेंबली 18,771 अरब रूपये की वफाकी बजट मंजूरी डेई छी कौमी असेंबली नए माली साल 2026-27 वफाकी बजट की मंजूरी डिनी फाइनेंस बिल साल 2026 ब मंजूर नाए वाले वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल ऐवान में पेश किया ऐवान बिल में MNA आलिया कामरान के तरमीम रद्द कर छी इजलास सुबह सुबह 11 वगे तई मुलतवी

करप्शन केस में बीआरटी येलो लाइन जो गिरफ्तार रगुणो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी पंजन दिन जिस्मानी रिमांड से एंटी करप्शन हवाले हथकड़ियों हाँ सिटी कोर्ट में पेश किया वो एंटी करप्शन की जांच ऑफिसर जमीर अब्बासी जो 14 दिन जो जिस्मानी रिमांड देने की सदा कई अदालत 5 दिन जिस्मानी रिमांड मंजूर कर वरतो। जमीर अब्बासी से बीआरटी येलो लाइन प्रोजेक्ट के ठेकेदार के 8 अरब रूपया अगवा देने इल्जाम है।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

कुरान पढ़ाया है बचपन में खुद तुझको शब्बीर ने, कुरान पढ़ाया है बचपन में खुद

तेरे लिख सकते नहीं, अनोर मजहर कहते हैं आसाफ तेरे लिख सकते नहीं, इरफान और मजहर कहते हैं अशजार कलम बन जाए फलक

0: 101.6 सुन जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सुन जो आवाज बुधंदा रहो।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
3: फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: मुल्कन विच में तकनीकी मामलों से गालू थी दियो पक्तो यकीन आए तो मुफ्ती मफामती यादाशनामे तहत चढ़ादार अमन कायम थी दो वजीर आजम जो कौमी असेंबली में खिताब शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान वड़ी सच्चाई से बिनी धुरन विच में वेछा घटाने लाय कोशिश कई उन मामले ते पाकिस्तान जो किरदार तारीखी आ ईरान अमरीका मुआहदे से सारी दुनिया में अमन कायम थी अल्लाह जेका इज्जत दिनी या आर्मी रुकन में भी ना मिली।

ईरान यूरेनियम ॿाहिरि मोकिलण बदिरां हुनजो रचाव घटाईंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक डार चयो त न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। अबनाह हुर्मुज़ मां जहाज 60 ॾींहनि ताईं बिना ड्रिप जे गुज़री सघनि था। जहाज़नि खे रुगो स्टैंडर्ड डियोगेशन या सर्विस फीस ॾियणी पवंदी। गाॾियुनि जो ॿियो मरेलो सख़्त थी सघे थो। ईरान अमरीका डील में कोफर नाकारी नुक़्तो नाहे। सऊदी, कतर, मिस्र ऐं इमारती सालसी जे अमल जी हिमायत कनि था। ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाखिर कालिबाद चयो आहे त 12 अरब डॉलर जी ज़ब्त कयल असासन जी बहाली वारे मुआहिदे खे हतमी शकल ॾिनी वई। आबनाह हुर्मुज़ में जहाज़नि जे अचवञ ते राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण जो इतफ़ाक थियो आहे। आबनाह हुर्मुज़ जो इंतज़ाम ईरानी बंदोबस्त तहत ई थींदो। गारियुनि दौरान इलाक़ाई सलामती ख़ुदमुख़्तियारी जी ज़मानत ॾियण ते इतफ़ाक़ थियो। आबनाह हुर्मुज़ सामूंडी जहाज़नि जे अचवञ लाइ मुकमल तौर ते खुली वियो आहे। ईरान एटमी शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणाइण लाइ राज़ी थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त ईरान आबनाह हुर्मुज़ में सुठा क़दम खणी रहियो आहे। ईरान मुआहिदे जी पाबंदी न कई त जेको ज़रूरी हूंदो उहो कंदासीं। ईरान वॾे पैमाने ते हथियारनि जे मुआइने लाइ राज़ी थी वेंदो। आबनाह हुर्मुज़ में सूरतहाल बहितरीन ऐं जहाज़नि जी अचवञ बहाल आहे। इसराइली होद ते क़ाइम लबनान में फ़ौजी कार्रवाई जारी रखण जो ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दिफ़ा वारे वज़ीर इसराइली फ़ौजी सरबराह जे गॾियल बयान में चयो वियो आहे त इसराइली फ़ौज ऐं शहरनि जा ख़तरा ख़तम करण लाइ कार्रवायूं जारी रहंदियूं। ॾखण लबनान में सिक्योरिटी ज़ोन बरक़रार रखण लाइ कार्रवायूं जारी आहिनि।

करप्शन केस में बीआरटी येलो लाइन जो गिरफ्तार अगूणो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी पंजन दिन के जिस्मानी रिमांड से एंटी करप्शन हवाले। जमीर अब्बासी के हथकड़ियों हाँ सिटी कोर्ट में पेश किया वो। एंटी करप्शन जांच ऑफिसर जमीर अब्बासी को 14 दिन जो जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा कई। अदालत 5 दिन जो जिस्मानी रिमांड मंजूर कर वरतो। जमीर अब्बासी से बीआरटी येलो लाइन के प्रोजेक्ट के ठेकेदार के 8 अरब रूपया अगवा देने का इल्जाम है। नवाबशाह में एफआईए सखर जो खानगी बैंक के छापो। ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार। एफआईए की टीम ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच मैनेजर के गिरफ्तार कर अंजतल हंध मुंतकिल कर छो। जरन चवण है सवा 2 अरब रूपये की मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की जांच शुरू कई वही। 62 मानू मलिस।

नौकोट के जो व्यापारी या जिम्मेदार मुबैना तौर से अगवास और मोटरसाइकिल हथ शहर में शटरबंद हड़ताल। व्यापारी या जिम्मेदार हरेश कुमार के अगवा खिलाफ व्यापारी एसोसिएशन पारा शहर में शटरबंद हड़ताल कई वही। मुगी के वारसन चवण आए तो हरेश कुमार पैं जमीन तं घर ईन्दे गुम थी पे सन मोटरसाइकिल बायपास तां मिली। हरेश कुमार रात फोन कर बुधा तो कि ज्यादातर मू अगवा खी वही रहा। व्यापारी हरेश कुमार के अगवा खिलाफ मिथी में भी एहतजाज किया।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

अल्लाह जाने अल्लाह जाने वसदा है अली साढ़े सावा बीचे जिंदगी गुजार दी है अली दी छावा बीचे अली दाए प्यार असा मंगे दुआवा बीचे गूंजता जहान विच नारा अली अली है मत्ते मलंगा दा गुजारा अली अली है जानदा है हाल अली सुन दा

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: लेके
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: हजारों में तर्तन थे तस्लीमा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हैदर।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: ईरानी सदर मसूद पशक्यान, सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ए आला अख्तियारन से मुलाकात कद। मुलाकात दौरान व्यापार तवानाई ए सरहदी सहकार से गालूद। ईरानी अख्तियारन जो चवण है त ईरानी सदर के दौरे जो मकसद ईरान अमरीका गाल में टियाकरी लाए पाकिस्तान की कोशिश जहा थोरा मण है। ईरान
3: तो तब भी ये हम अचीव ना कर पाते और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अमरीका और ईरान के दरमियान न सिर्फ जंग बंदी हो चुकी है बल्कि अगले 60 दिन में जबकि टेक्निकल नेगोशिएशन होंगी और दूसरे मामलात के ऊपर चाहे वो जौहरी असासे हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनके ऊपर गुफ्तगू होगी और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कि ये MOU इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा जबकि दुनिया में अमन कायम होगा।
2: ईरान ए अमरीका विच में जंगबंदी थी वही ईंदड़ 60 दिन दौरान बिन्हीं मुल्कन विच में टेक्निकी मामलन ते गालियों भी थींदियूं। पख्तो यकीन है त मफाहमती यादाश्त नामे तहत जटादार अमन कायम थींदो। वजीर आजम जो कौमी असेंबली में खिताब। शहबाज शरीफ चो तो पाकिस्तान वडी सच्चाई से बिन्हीं धुरन विच में वेछा घटाने लाए कोशिश कई। इन मामले ते पाकिस्तान जो किरदार तारीखी है। ईरान अमरीका मुआहदे से सजी दुनिया में अमन कायम थींदो। अल्लाह जेका इज्जत डिनी उहा अरबे रुपयन में भी ना मिलंदी।

ईरान यूरेनियम बाहर मोकलण बदिरां उन जो रचाव घटाईंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो अरब मीडिया के इंटरव्यू। इसहाक डार चयो त न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। आमना हुर्मज़ मां जहाज़ 60 ॾींहनि ताईं बिना टेरिफ जे गुज़री सघनि था। जहाज़नि खे रुगो स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फी ॾियणी पवंदी। ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो सख़्त थी सघे थो। ईरान अमेरिका डील में को नाकारी नुक़्तो नाहे शामिल। सऊदी, कतर, मिस्र ऐं अमाराती ट्रैकड़ीअ जे अमल जी हिमायत कयूं था।

0: कानून में ना हो। किसी की जरूरत है कि कोई किसी को ऐसे पैसे बताए? कानून में प्रोविजन था कि आप जल्दी, मैंने 9 महीने पहले काम खत्म करवाया, अभी भी वही ठेकेदार 9 महीने पहले खत्म करने का लिख के दिया है, बैंक गारंटीज पड़ी हुई है। अभी मैं अब क्या बोलूं आपको, मेरा तो मामला चल रहा है, वरना मैं आपको एक एक चीज का मैं जवाब अच्छे तरीके से और भी दे सकता हूं। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह ताला मैं रेस्पेक्ट करता हूं कानून की, मैं खुद कानून का मुहाफिज रहा हूं। भाई मैं क्या करता, मेरे घरों पे रेड चलते थे, मैं प्रोटेक्ट।
1: करप्शन केस में बीआरटी येलो लाइन जो गिरफ्तार, अगुणो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी 5 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते एंटी करप्शन हवाले। जमीर अब्बासीअ खे हथ कड़ियूं हणी सिटी कोर्ट में पेश कयो वियो। एंटी करप्शन जी जांच ऑफिसर जमीर अब्बासीअ जो 14 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड ॾियण जी इस्तदा कई। अदालत 5 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड मंजूर करे वरितो। जमीर अब्बासीअ ते बीआरटी येलो लाइन प्रोजेक्ट जे ठेकेदारनि खे 8 अरब रूपया अगवाट ॾियण जो इल्ज़ाम आहे। जमीर अब्बासी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त कंहिं में ज़रूरत आहे जो बिना कानून जेको अगवाट अदायगी करे, हर शइ कानून मूजिब कई आहे, मुंहिंजा मामला हलंदड़ न हुजनि हा त हर शइ जो जवाब ॾियां हा।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: परेशान भी तू।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अगर हम अरबों रुपए खर्च करते तो तब भी ये हम अचीव ना कर पाते, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ जंग बंदी हो चुकी है बल्कि अगले 60 दिन में जबकि टेक्निकल नेगोशिएशन होंगी और दूसरे मामलात के ऊपर, चाहे वो जौहरी असाजे हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कि ये MOU इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा जबकि दुनिया में अमन कायम होगा।
2: ईरान ए अमेरिका विच में जंगबंदी थी वही, ईंदड़ 60 दिन दौरान बिन्हीं मुल्कन विच में टेक्निकी मामलन ते गालियों भी थींदियूं। पुख्तो यकीन है तो मफामती याददाश्त नामे तहत जटादार अमन कायम थींदो। वज़ीर आज़म जो कौमी असेंबली में खिताब, शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान वरी सच्चाई से बिन्हीं धुरन विच में वेझा घटाने लाय कोशिश कई। इन मामले ते पाकिस्तान जो किरदार तारीखी है, ईरान अमेरिका मुआहदे से सजी दुनिया में अमन कायम थींदो। अल्लाह जेका इज्जत डिनी उहा अरबे रुपये में भी न मिलंदी है। ईरान यूनियम बाहर मोकलण बदरा उन जो रचाव घटाइंदो, नायब वजीर आजम इसाक डार जो अरब मीडिया के इंटरव्यू। इसाक डार चयो तो न्यूक्लियर फायल जब्तल असासन ए लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। आबनाए हुर्मस मां जहाज 60 डीहन ताई बिना टेरफ जे गुजरी सकन था। जहाजन के रुगो स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देनी पौंदी। गाड़ियों जो बियो मरलो सख्त थी सके तो। ईरान अमेरिका डील में को नाकारी नुक्तो शामिल न है। सऊदी कतर मिस्र अमारात सारसी जी अमल की हिमायत कन था।
3: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में तेज जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
4: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

सजाया हुआ नूरी दरबार है, मेरे आसपास मेरा अली सरकार है। जैसा हूँ जहाँ भी हूँ अली ही संग संग है, इश्क अली ने किया मुझे रंग रंग है अली का।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम,

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GA FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जिए

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: FM 91.6 सुनते जो आवाज बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इस्लामाबाद मफामती याददाश्त वड़ी कामयाबी है। खातरी करायां तो पाकिस्तान अमेरिका ईरान विच में जटादार मुआहदे ते वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम चयो तो जगबंदी एमओयू लाइ फील्ड मार्शल वड़ी मेहनत कई। ईरान में हजारे मानून की शहादत से दुख थियो है। जल्द ईरान वड़ी मुआशरे आजम ईरानी सदर विच में मुलाकात दौरान पाक ईरान लागापा इलाकाई अमन मजबूत बढ़ाने जो असर।

0: जन लागापन के घणी अहम इलाकाई मामलन में सरकार के हथी डेण जा ख्वाहिशमंद आयू। सदर पारा ईरानी सुप्रीम लीडर लाइ ने ख्वाहिश जो इज़हार।
1: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी सदर मसूद पशकियान की मुलाकात। आईएसपीआर मौजूद मुलाकात दौरान इलाकाई अकबराई ए अमन वाले कदम के ख्याल की डे वठ। ईरानी सदर गाल में तामीरी किरदार चिंताओं में घटताई ए इलाकाई इस्तेहकाम लाइ पाकिस्तान के किरदार की सारा कई। इलाकाई स्टेक होल्डर्स में वधाने से खिते में अमुन इस्तेहकाम लाइ पाकिस्तान जो पुख्तो अज़म वरजायो। लागापा वधीक मजबूत बढ़ाने जो भी अज़म।
2: अगर हम तो तब भी ये हम अचीव ना कर पाते और आज अल्हम्दुलिल्लाह कर्म से अमरीका और ईरान के दरमियान न सिर्फ बल्कि अगले 60 दिन में और दूसरे मामलात के ऊपर चाहे वो जौहरी हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला के फजल से कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा।
0: अमरीका भी वही सत्तर दौरान बिन्हीं मुल्क माहौल पुख्तो एक जटादार अमन कायम किया। बिन्हीं दुरियन का घटाना किया है अल्लाह जका इज्जत
3: दी। जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।